मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

0: रही है रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मी अंजली भिडे, आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

मुद्दाम कमी लईत घेतोय, त्यांचं फार वरच्या लईत जायचंय आणि आत्ताही तो पटकन त्याची उकल होणार नाही म्हणून मी कमी लईत घेतो. इथे अभ्यासकांनी एक करण्याची गोष्ट किंवा लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की दग्याची थाप अशी नाहीये, प्लेन नाही, तर ह्याच्यात ही कर्व आहे, त्याच्यामध्ये शाई बसली. हा जो थापेचा प्रकार आहे हा विशेषत्वाने मला तुम्हाला सांगायचा. बघा, ही बेसिक आहे. बघा, केना ना केना ना केना केना ना केना ना केना केना ना केना ना केना केना ना केना ना केना. आता त्याच्यात ते काय व्हेरिएशन करायचे, किना ना किना के किना किना ना किना के किना किना ना किना के किना किना ना किना के किना, हे एक व्हेरिएशन. किना के किना के किना किना के किना के किना किना के किना के किना किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के किना के कि

स्नेहे सीते शशि मन साश ऋषि महासत्य वृंद नौ तत्वों की यात्रा पर गतिशील होने के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण जीवा जीवा पुण्यम पावा सरसोर यदि जनना बंधो मोखो यथ नो तत्ता हुंति नायवाश नो तत्ता हुंति नायवाश ये नो तत्व है, ये नो रहस्य है। रहस्य उसको कहते हैं कि कितना भी जान लो, कितना भी जान लो तो जाना तुम जाता है, अनजाना ज्यादा रहता है, उसको रहस्य कहते हैं। जिसको पूरा जान नहीं पाते, उसमें से पहला तत्व है जीव तत्व। क्या है? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? नहीं, आप जीव नहीं हो, आप सजीव हो। क्या है? हम जीव नहीं है, हम क्या है? सजीव है। पहले जीव, सजीव, राजीव, ये तीन शब्द समझ लीजिए। जीव कौन है? सिद्ध जीव है। जीव के दो प्रकार है, एक संसारी जीव और एक सिद्ध जीव। सिद्ध जीव जीव है, वो शुद्ध जीव है, हम मिक्स है। कैसे है? मिक्स है हम। इसमें हमको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पाटा कैसा है? निर्जीव है ना। डेड बॉडी कैसी है? और जो डेड में उसको क्या कहेंगे आप? सजीव है। क्या है? और सजीव के प्रैक्टिकली चार अनिवार्यता होती है। सजीव किसको कहना और निर्जीव किसको कहना? सजीव किसको कहना, निर्जीव किसको कहना और जीव किसको कहना? शब्द है ना, जीव, सजीव और अजीव। आज अपन जीव तत्व की बात कर रहे हैं। जीव कैसा है? सजीव भी है और शुद्ध जीव भी है। जो शुद्ध जीव है उसमें कोई भी आश्रय नहीं होता है, कोई संवर नहीं होता है, कोई बंद नहीं होता है, कोई निर्जरा नहीं होती है, वहां केवल मोक्ष ही रहता है। आश्रय भी नहीं है और आश्रय नहीं बंधने इसलिए पुण्य और पाप भी नहीं है और बंधा हुआ नहीं इसलिए निर्जरा भी नहीं है। हम सजीव हुए और सजीव में आश्रय 24 आवर्स जारी है, संवर भी जारी है, निर्जरा भी जारी है और बंधन भी जारी है। ये चार प्रक्रिया सजीव में कंटिन्यू चलती है। अब ये चार प्रक्रिया ऑटो मोड पर भी चलती है, ऑर्गेनाइज भी की जा सकती है, मैनेज भी की जा सकती है। ऑटोमोड पर अनेक सेंसर क्या है? जैसे आपका किडनी काम कर रही है, आपका लिवर काम कर रहा है, आपको पता चल रहा है ऑटोमोड पर। आप खाते हैं और डाइजेशन सिस्टम उस पर वर्क करती है। कैसी करती है? ऑटोमोड पर वर्क करती है। उसमें आपको कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता
आपके पास काम क्या है केवल? वो मैं चबा कर खाऊंगे तो सिस्टम को काम करना आसान रहेगा। चलती रहती यहां तक अपने हाथ में, घाटी के नीचे नहीं उतरता है तब तक तुम्हारे हाथ में क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या अंदर जाने देना क्या अंदर नहीं जाने देना, उस पर क्या काम करना कैसे प्रोसेस करना, ये सारा क्या है ऑटो मोड पर है। तो इसी चार प्रक्रिया ऑटो मोड पर भी ऑटो मोड पर चलती है, और इन चार प्रक्रिया को कंट्रोल भी ले सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और जो इन चार क्रियाओं को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, अंडर कंट्रोल लेता है, वो मोक्ष में जाता है। जो इन चार प्रक्रियाओं को ऑटो मोड पर चलने देता है वो संसार में भटकता है, उसकी पुण्य का भी बंद हो सकता है, पाप का भी बंद हो सकता है, लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। धर्म क्या है? इन चार क्रियाओं को अंडर कंट्रोल लाना, अपने नियंत्रण में लाना, कि किसका आश्रय होगा, किसका संवर होगा, किसकी निर्जरा होगी, किसका बंद होगा, ये ऑटो मोड पर नहीं चलेगा। ये जो तय करता है वो जीव तय करता है। कौन तय करता है? और कौन सा जीव तय करता है? जो स्वयं जीव कौन तय कर सकता है? दरवाजा लगाना कि खुला रखना, कौन सी खिड़की खुली रखनी कौन सी खिड़की बंद रखनी, ये स्वयं आदमी तय कर सकता है कि जागा आदमी तय कर सकता है? वैसे ही है। इस सजीव का जीव जब जाग जाता है तो देखता है कि कौन सी खिड़की खुली रखनी कौन सी खिड़की बंद करनी है, किसको पकड़ के रखना है और किसको जाने देना है। ये कौन तय कर सकता है? केवल जागा हुआ जीव तय कर सकता है, सोया हुआ जीव तय नहीं कर सकता है। तो ये जो जीव है, ये जीव के दो प्रकार, एक सजीव और एक शुद्ध जीव। कितने? शुद्ध जीव। अब सजीव के पास और निर्जीव के पास क्या अंतर है? जो भी जीव है, चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे द्वेंद्रीय हो, चाहे तेंद्रीय हो, चाहे चौरेंद्रीय हो, चाहे पंचेंद्रीय हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे निगोद हो, चाहे वायरस हो, वायरस भी क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। जो हवा हम ले रहे वो भी क्या है? सजीव है। सारा क्या है? सजीव है। इस सजीव क्यों है? किसको सजीव कहते हैं? जो चार काम करता है, आहार करता है। क्या करता है? आहार करता है। आहार का जो आहार ग्रहण करके जो अपनी बॉडी बनाता है, और उस बॉडी में जिसके पास इंद्रियां होती है, और जो श्वासोच्छ्वास करता है, क्या श्वासोच्छ्वास करता है, ये चार सजीव के लिए अनिवार्य है। वो एक रेंदीजिए बेन्द्रीय रेंदीजिए पंचन देवता रेंदो या नारकी रेंदो, ये चार क्रियाएं उसकी होती ही होती, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। आहार करते हैं, और आहार भी कैसा करते हैं? मुंह से भी करते हैं, रोमहार भी करते हैं, इंद्रियों से भी आहार करते हैं, इसे आंख से भी। आहार का मीनिंग क्या है? बाहर से ग्रहण करना, और इसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। चार चाहिए। कितने चाहिए? चार चाहिए। और इसमें जिसको आप पहचान सको, उसमें क्या है? दो है, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। वो श्वासोच्छ्वास करता है कि नहीं करता? अमृत करता है कि नहीं करता है? अपने स्कूल के दिनों में दो तीन प्रयोग करे होंगे कि मोमबत्ती जलाई है और उस पर ग्लास रख दिया है,
तो थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाती है मोमबत्ती, हवा का झोंका नहीं आया है, हवा का झोंका नहीं आया है, और मोम भी है फिर भी बुझ गई। क्यों? ऑक्सीजन समाप्त हो गए, आहार तो है वहां पर, आहार भी है शरीर भी है, लेकिन ऑक्सीजन फिनिश हो गया। क्योंकि जलते समय क्या होता है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जैसे आप करते हैं, मैं करता हूं, सब करते हैं। तो जहां ये प्रक्रिया चलती है उसको सजीव कहते हैं, जीवता मिट्टी और निर्जीव मिट्टी। आपने कई बार सुना होगा कि जहां अनवश्य एटम बम गिर जाता है वहां की जमीन निर्जीव हो जाती, बंजर हो जाती है। ईंट जिसको ब्रिक्स बनाते हैं आप, मिट्टी की ईंट, वो भी कैसी है, निर्जीव है, क्योंकि वो आग से गुजर गई। अब उसमें श्वासोच्छ्वास और जिंदा मिट्टी हाथ में लो, जिंदा मिट्टी हाथ में लो तो आपको स्पंदन का महसूस होगा, स्पंदन का एहसास होगा। अभी आप जानते हो ना आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड से भी अधिक तेजस्वी दिखते हैं। कैसे पहचानोगे आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल डायमंड सजीव होता है, नेचुरल डायमंड सजीव होता है, उसको हाथ में लिया तो आपको स्पंदन का एहसास होगा, वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। क्यों? श्वास करता है, श्वासोच्छ्वास करता है, वो कंटिन्यूस श्वासोच्छ्वास करता है। और जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसको तुम हाथ में लो, सुंदर दिखेगा, डिट्टो दिखेगा, लेकिन वो श्वासोच्छ्वास नहीं करता है। जैसे सेल आप यूज करते हैं, जो बैटरी आप यूज करते हैं, बैटरी श्वासोच्छ्वास नहीं करती। बैटरी चार्ज हो सकती है, लेकिन किससे चार्ज होती है? इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। बैटरी किससे बनी है? केमिकल से बनी है, और सारा केमिकल कैसा है? निर्जीव है। इसलिए जो सेल की घड़ी पहनते हैं उसका संगठन नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है, श्वासोच्छ्वास नहीं करती। और आप सभी को पता होगा जितने भी सेल रहते हैं वो वाटर प्रूफ एयर प्रूफ रहते हैं। अभी लाइट जलाई है, लाइट जल रही है, अभी इसके अंदर हवा है क्या? हवा है इसके अंदर, लालटेन में कि हवा बंद हो जाए तो लालटेन जलेगी क्या? और इसके अंदर हवा गई तो जलेगा क्या? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ये सजीव नहीं है, क्योंकि वो श्वासोच्छ्वास नहीं करती। तो जीव ये चार क्रियाएं उसके ऑटो मोड पर चलती है, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। इन चार को जो मैनेज कर ले, चार को मैनेज कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले, ऐसा आहार करना, ऐसा शरीर बनाना, कैसी इंद्रिया बनानी, कैसा श्वास लेना, कैसा श्वास छोड़ना, इसको जो ऑर्गेनाइज कर ले वो डेवलप होता है, वो ऑटो मोड पर नहीं चलता है। आपका सांस कैसे चल रहा है? हेलो, ऑटो मोड पर, इसमें आप डेवलप नहीं हो रहे। अभी आपने सांस को ऑर्गेनाइज किया, डायफ्राम ब्रीदिंग शुरू करें। जैसे छोटे बच्चे को जब देखोगे जिसको माँ ने बिगाड़ा नहीं, छोटा बच्चा किसको देखा जिसको मां ने बिगाड़ा नहीं,
जो उसको सोना है तो वो सोता है, जो उसको

सबसे पहले भरा हमारे आहार को, हमारे नींद को, हमारे श्वासोच्छास को और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को सबसे पहले किसी ने बिगाड़ा है। हेलो, भूख नहीं तो भी खा, और नारे नाक लगने, नारे नाक लगने, वो बच्चों आगे जावे चाहिए या थाली लेने नारे जावे चाहिए। मैं कई बार माओ को कहता हूं, ऐसा तुम्हें किसी ने खिलाया बिना भूख के? हेलो, कितना अच्छा लगेगा ना? ऐसा जिनका हो गया ना, और फिर उसने सोना कब जब मां सुनाई देता, उसने उठना कब जब मां ने उठना था। ऐसा जिस बच्चे का शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे को तुम सोता हुआ देखो, बैठा हुआ देखो, चलता हुआ देखो, कुछ भी करता हुआ देखो, उसके श्वास के साथ उसका पेट जो है अंदर बाहर होता है। कैसे होता है? सांस छोड़ा, पेट अंदर चला गया, सांस लिया, पेट फूल गया। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे गुरुदेव का 92 की एज में भी बच्चे जैसा श्वास था, और मैंने उसका बहुत आनंद लिया है। एक तो उनका इतना मुलायम था, इतना मुलायम पेट था, आपको क्या पता, मुझे पता है। हमें मस्त पैकिंग उस पेट पर अपने शरीर को रख करके बिल्कुल आराम से अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत आनंद दिया है। उनकी पूरी ब्रीदिंग जो है लिवर से होती थी, नाभि से होती थी, इसलिए वो 92 की एज में भी फ्रेश नजर आते थे। आपकी श्वास की शुरू शालो ब्रीद हो गई, शालो ब्रीद से आज से 15 साल तक तो कम से कम चेस्ट हिलती थी, आप तो तुम्हारी चेस्ट भी नहीं हिलती, पेट हिलना तो बंद ही हो गया। हेलो, मन तत्व की चर्चा चल रही, किसके चल रही है? मन तत्व की चर्चा चल रही। और जिस बच्चे का पेट माने टूस टूस करके भर दिया, उसको सांस लेने के लिए डायफ्राम को नीचे ऊपर होने की जगह रही नहीं। जब डायफ्राम ब्रीदिंग होती है तो पूरे डाइजेशन सिस्टम की ऑटोमेटिक 24 आवर्स एक्सरसाइज होती है। अब वो एक्सरसाइज बंद हो गई, और किसने बंद कराई? प्यारी प्यारी मां ने। और बस आज तक मुझे यही तो मां नहीं मिली जो कहती कि मारा बेटा बराबर खा रहे, कि मेरी बेटी बराबर खा, मां सब खा गए इसको नहीं, बिना खयालों से तपस्या कर रहे हैं। श्वासोच्छ्वास क्या है? इस श्वासोच्छ्वास इसको क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। कितना डेवलप करना चाहिए? आपको ध्यान लगाना है, आपको मन को शांत करना है, तो सिंपल स्टेप प्रोसेस है। आपको सुख में रहना है, आपको कम माइंड होना है। नारकी के जीव कुत्ते, कुत्ता है ना, कुत्ता कैसा ऐसा श्वास ले, कंटिन्यू श्वास, विदाउट ब्रीथ, विदाउट श्वास। देवलोक के जो जीव है, जैसे जैसे ऊपर का देवलोक शुरू होता है, वैसे वैसे उनका श्वास गहरा होता है। श्वास क्या होता है? और जैसे श्वास गहरा होता है, वे सब का सुख बढ़ते जाता है, वैसे उनकी भूख कम हो जाती है, वैसे उनके कषाय कम हो जाते हैं, वैसे उनका क्रोध कम हो जाता है, वैसे उनका अहंकार कम हो जाता है, वैसे उनकी माया कम हो जाती है। श्वासोश्वास के आधार पर

0: गंगा चली हुई है कि जितने श्वास निकल के लाया उतनी आयुष है, नथिंग। 33 सागरपम का आयुष्य सातवें नारकी के जीव का भी है और 33 सागरपम का आयुष्य श्रेष्ठतम देव का भी है। लेकिन सातवें नारकी का जो जीव है, नारकी का जीव, वो एक मिनट में 100 श्वास करता। कितने? एक मिनट में 100 श्वास करता है। और जो श्रेष्ठतम देव है अनुपरिमल वासी, 33 पखवाड़े में एक श्वास लेते हैं। कितना? सुनो, 33 पखवाड़े समझे कि नहीं समझे? 33 पक्ष, 33 पूनम, 33 अमोषा, 16.5 महीने चक्कर तो नहीं आया ना? कितना? 16.5 महीने उनका तेज, उनका होश, उनकी शांति, वो जो यहां वहां से आयुष्य पूर्ण करके यहां आते, यहां से सीधा मोक्ष में जाते। इसलिए जैन आगम कहते हैं, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, पीस ऑफ माइंड, वो तुम्हारे श्वास की प्रक्रिया पर निर्धारित है। जितना तुम्हारा श्वास लंबा और गहरा होगा, उतने तुम्हारे सारे टेंशन कामने जाएगा। श्वास के समझे, लंबा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। लंबा और गहरा श्वास करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीधा बैठना पड़ता है। अर्थी झुकने बैठो ना तो डायफ्राम पूरा ओपन हो ही नहीं सके। सीधा बैठना पड़ता है। क्यों? भगवान महावीर ने अपने पास दीक्षा लेने वाले इंद्रभूति गौतम को, किसको? इंद्रभूति गौतम को, सुधर्मा स्वामी को, जैसे उन्होंने दीक्षा ली तो सबसे पहले 6 बातें उनको सिखाई, कैसे चलना। और उसका सूत्र क्या? चलते समय बराबर बेली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग होनी चाहिए। और नेवल ब्रीदिंग चलते समय हो गई तो यहां फैन जमा होने का काम ही नहीं रहा। कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, ये इंद्रभूति गौतम को सिखाया। तो आप आए ना मेरे पास तो पहले बैठना सीख, पहले चलना सीख, पहले खड़े रहना सीख, और फिर भोजन करना सिखाया, खाना सिखाया, फिर बोलना सिखाया। कैसे बोलना, कैसे बोलने में क्या है, सीक्रेट बता रहा, सारे सीक्रेट ओपन कर रहा हूं। हम जो बोलते हैं ना, जिंदगी क्या होता है, बोलते समय हम श्वास मुंह से ले लेते हैं, ध्यान में नहीं रहता अपना है। बढ़ते थे पर महावीर टेक्निक सिखाते थे कि बोलते समय भी श्वास नाक से आना चाहिए। नाक से श्वास आएगा तो बना कभी ड्राई होगा ही नहीं। मुंह से श्वास लेते हैं तो ड्राइनेस आना ही आना है। तुम सिखाते थे, जितना तुम्हारा श्वास गहरा होगा उतना तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और तुम्हें किसी भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जीव तत्व की पहली 4 बातें याद रखना। हम सजीव है, कौन है? हम सजीव है। और सजीव के पास, हर सजीव के पास 4 क्रियाएं कंटिन्यू चलती है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। एक ऑटो मोड पर चलता है। ईश्वर लंबा श्वास लेता है, लंबी उम्र है उसकी। श्वास योगदान लीजिए तो मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी अगर और बात करनी हो तो की जा सकती है कि ये ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना। और आगे बात बताऊंगा आसनों के समय कि सबसे बड़ा आसनों का जो सोर्स है वो श्वासोच्छ्वास है। यदि श्वास तुमने कॉन्शियसली लेनी, सजगता के साथ लेनी, उसके साथ कौन सा विचार आ रहा है इस पर कंट्रोल हो गया तो ध्यान हो गया। श्वास के माध्यम से बाकी 9 प्राणों को शक्ति मिलती है। 10 प्राण है, कितने प्राण है, कितने प्राण है, आगे आएगा, धीमे धीमे आएगा सर। 10 प्राण है और इन सबको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, इनको संयम में रखना, इसको धर्म कहते हैं। और वो मंगल है, धम्मो मंगल मुख्यतम मायसा संयमो, तो ये संयम है। यदि श्वास में हिंसा हो गई तो काम समाप्त हो गया, और श्वास में अहिंसा आ गई, श्वास में संयम आ गया, श्वास में तप आ गया, तो देखो क्या मजा आती जीने की। ये 9 तत्व की शुरुआत हो गई आज से आपकी। क्या समझ में आ रही है? और जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ जाए उसको मैं कल से बाहर क्वेश्चन बॉक्स रख देता हूं, आते समय उसमें डाल देना। जो जो आपकी बात समझ में नहीं आई होगी उसका एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। तो जीवा ये जीव है, कौन है? पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, बहुत प्रश्न आते हैं कि साइंस ने अब कोलन बना लिया, रासायनिक प्रक्रिया थी। क्या थी? रासायनिक प्रक्रिया थी। तरह में डाल दे तो ये जीव उत्पत्ति। लेकिन जीव उत्पत्ति किसको कहते हैं? इसको समूर्छित जीव कहते हैं। कौन से जीव कहते हैं? समूर्छित जीव। मतलब क्या हुआ कि इनको केवल ऐसे जीवों को शरीर धारण करने के लिए केवल एक पर्यावरण लगता है, एक एटमॉस्फेयर लगता है, एक एनवायरमेंट लगता है। वो एनवायरमेंट मिल गया कि जीव तैयार हो गए। जैसे बारिश के दिनों में जैसे तुम दिया जलाते हो, पतंगे कहां से आते हैं? आते नहीं आते। वो कहां से तैयार हुए? जो हम जीव थे उन जीवों के लिए जैसा शरीर बनाने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए था, जैसी गर्मी जैसी नमी चाहिए थी, वो आ गई, वो तैयार हो गई। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की बॉडी में कीड़े तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हुए? कहां से आए हो? वहां ऐसा इन्वायरमेंट हो गया तो वहां जो जीव थे उन्होंने शरीर धारण कर लिया है। तो टेस्टिटिव बेबी कोलन, इसके लिए जैन आगम को कोई आपत्ति नहीं है। इज इट पॉसिबल? बनाया जा सकता है, जेंडर चेंज किया जा सकता है, तो जैन आगम बंद है। इस सारी चर्चा क्यों कर रहा हूं आपके साथ कि बहुत सारी जीव मेरे सामने बातें आती है तो फिर आपको लगा अरे ईसु तो कौन है, ईसु किसके हो रही है? और फिर क्या चलता है कि ये अंडा जो है इनफर्टिलाइज है, इसलिए शाकाहारी, इसको खा सकते हैं। क्या फर्टिलाइज हो कि इनफर्टिलाइज हो, वो सजीव है। वो क्या है? सजीव है। मैंने बोले इसमें से चूजा पैदा नहीं होता है, इसमें से चूजा पैदा नहीं होता है। अरे जो बांस से होती है ना उससे भी बच्चा तैयार नहीं होता, इसलिए बांस से क्या निर्जीव है क्या? हेलो बोलो जी, जिससे जीव जो माने बने वो सजीव है कि नहीं है? तुम भी तो किसी को जन हमने देते हो, तुम भी फिर निर्जीव हो गए। पुरुष भी सजीव होने का आधार क्या है? वो आहार करता है, वो श्वासोच्छ्वास करता है, और फर्टिलाइज एक हो, क्यों फर्टिलाइज एक हो, वो ब्रीद करता है। और उसको जो ब्रीद का मौका नहीं मिला तो वो सड़ जाता है। इसलिए वो फर्टिलाइज है, क्यों फर्टिलाइज है, वो सजीव है। उसमें से चूजे का जन्म हो या नहीं हो वो सजीव है। ऐसे बहुत सारे विषय आपके पास में। नौ तत्व की यात्रा क्यों शुरू करें? बखान सुनता सुनता तो हो गया कल्याण। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जैन आगम का जो सीक्रेट है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं। तो प्रेरणा प्रयोग किस पर करोगे? आहार को कंट्रोल, यानी संयम, श्वास को कंट्रोल, सीधा बैठना, बैठने भी तो सीधा नहीं बैठ सको। और जब तक तुम सीधा बैठोगे नहीं तब तक ब्रीथ प्रॉपर होगी नहीं, डक जाता है ना, जैसे झुक गए ये डक गया। ये सीधा है तो ओपन है, उसको स्पेस है। इस तरीके से जीव तत्व की चर्चा और चलेगी और चलेगी, है ना। बस छोटा सा सूत्र लेकर के बात करो बेटा, ये सजीव जीव कौन सी गति में जाएगा? ये तुम्हारा जो शरीर बना है वो किस कारण से बना है? किसी पर देवता ने, परमात्मा ने तुम्हारा शरीर बनाया? मां बाप ने तुम्हारा शरीर बनाया? मनुष्य की यात्रा इन तीनों के संगम से चलती है। किसे? तीनों का संगम, बाप की शक्ति, मां की शक्ति और जीव की स्वयं की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का जिसमें संगम होता है तो जीवन पवित्र बनता है। और इन तीनों का मिलन हो जाए और संघर्ष हो जाए। मिलने में दो बातें होती है ना, एक कॉपरेशन भी होता है और एक कॉम्पिटिशन भी होती है। हेलो, मिलने के बाद एक संघर्ष भी होता है क्या? फाइटिंग होने के लिए मिलना जरूरी कि नहीं है? बिना मिले फाइटिंग हो सकती है? बिना मिले फाइटिंग हो सकती है क्या? नहीं। तो ये तीन शक्तियों का यदि संगम हो जाए तो जीवन पवित्र शुरू होता है। और मां की शक्ति और कुछ है, पिता की शक्ति और कुछ है। इन दोनों का चल रहा है महाभारत। क्या चल रहा है? हेलो। और उसमें बेचारा वो जीव आ गया वहां पर, तो सीधा कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हो। तो आप कुरुक्षेत्र में पहुंचेगा तो गुरु रण सिंधन हो ही गया होगा। अभी कल ही रणसंसार का प्रीप्लानिंग का कार्यक्रम पूरा हुआ। साधारण टेलर ने सिखाई, मैंने दूसरी बातें करी उनके साथ, और उसमें एक ही बात करी, ये बात करी कि तुम दोनों का परस्पर में श्रद्धा प्रेम सौहार्द भाव होगा तो अंदर आने वाले जीव को संगम का तीर्थ मिलेगा। और तुम दोनों में ईसो नहीं, ऊसो है, ऊसो नहीं, ईसो है, तुम्हारी बात मानो नहीं, तुम्हारी बात माने नहीं। हेलो, कपल लाइफ की एक ही पहचान। कपल लाइफ समझ में आया क्या? वो शादीशुदा है या नहीं है उसकी एक ही पहचान। दोनों के बीच में मतभेद चलता रहे, संघर्ष चलता रहे तो कपल पक्का है। क्या अनुभव था? अच्छा प्रसंग सुनाया था। मैं कपिल शिविर ले रहा था 2006 में पुणे में, और कपिल शिविर में मैंने कहा कि सारी दुनिया तुम्हें सयाना समझ सकती है, सारी दुनिया तुम्हारा लोहा मान सकती है, लेकिन तुमको सयाना कौन नहीं समझेगी? बोले जी, घरवाली मस्त हो जाते, उसकी नजर में तुम कभी सयाने है ही नहीं। ये बात मैंने क्लास में कही, शिविर में कही, और इसका फलन जो भी किया तो मैंने श्रीमान जी को, श्रीमान जी ने एक बार कहा कि हमेशा पैसा मांगती है, कभी अक्ल भी मांग लिया कर। तो श्रीमती जी ने पलट कर जवाब दिया, जिसके पास जो होता है वही मांगा जाता है। श्रीमान जी ने पलट कर जवाब दिया, अक्कल होती तो तेरे साथ शादी का करता, तेरे साथ शादी करी उसी दिन तय हो गया मुझे अक्कल। बोले सर, कपिल जी ने सुनाया, शाम को सतीश भाव आए और बोले मासा बिल्कुल सही बात नहीं। बोले क्या हुआ? बोले मेरे साहब सेंट्रल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मेरे ऑफिस में अपनी फैमिली के साथ आया था। किसी के उनके पूरे परिवार थे, बोले उनका भतीजा भी था, भाई भी था, सब थे बोले, और साथ में वो भी थी। चर्चा चली और जैसे मिनिस्टर ने कुछ बीच में बोला तो बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन घर वाली बोली, तुम्हें बदी बोलू लगा, तुम्हारा कहीं कड़क नहीं? हेलो, मैं लाइन में दे रहा हूं कि जो आदमी मिनिस्टर जिंदा है उन्होंने मुझे नाम भी बताया। तो कहने सभी दुनिया, हेलो, कह सके जिला साथी थे फेरालिया ने। अब ऐसा यदि कपिल नाइक रहेगा तो आने वाले जीव को धर्म क्षेत्र मिलेगा कि कुरुक्षेत्र मिलेगा? है, कुरुक्षेत्र मिलेगा। मैंने सुझाव दिया उनको कि एक साल के लिए तुम धर्म क्षेत्र बन जाओ, बाद में तुम आगे जो करना करो, लेकिन पेरेंट्स में तुमको जाना है, माँ बाप तुमको बनना है, तो कॉम्प्लिकेशन बंद करो, संघर्ष बंद करो, एक साल के बाद तुम वापस फैन ओपन कर दो। एक साल के लिए फैन क्या करो, हेलो, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे लिए नहीं लेकिन आने वाले जो को तो मिल जाए। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को दिए, मैं तो आरएम दीदी मेरे पास आते हैं ना, आरएम दीदी को मेरे पास देता हूँ, कई बार मैं टेस्ट भी करता हूँ, टेस्ट करते समझ जाता हूँ कि इसके समय में अंदर में कुरुक्षेत्र चला के धर्म क्षेत्र चला। बच्चा मेरे पास आया, वो शांत था और मेरे पास आया और मैंने उसको टच किया, वो मुस्कुराने लग गया, तो मैं समझ जाता हूं कि माँ बाप ने 9 महीने धर्म क्षेत्र दिया। और बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको टच किया कि उसे मेरा हाथ निकालने का प्रयास किया, कि मैं समझ जाता हूं कि अंदर क्या चल रहा है। ये यात्रा है, आरंभ गर्भ संसार का कार्यक्रम कराते लक्ष्य उसका एक ही है, तुम पर कुरुक्षेत्र से जन्मे, कम से कम तुम्हारे आने वाली संतति कुरुक्षेत्र से नहीं जन्मे, इतना ही लक्ष्य है उसका। और बड़ा आनंद का कार्यक्रम है। तो समझ में आयो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हो? नहीं, जिसो मानसा भाग्य में लिखे हो शिला हो सो हो सकते हो। वापस सुन लीजिए वाक्य को, 9 तत्व की यात्रा शुरू करी तुम्हारे पास, निश्चय शुरू करी है कि परमात्मा के पूरा जिन शासन का साइंस विज्ञान अध्यात्म इन 9 तत्वों में। तीर्थंकर महावीर कहते हैं तो केवल स्वयं का ही भाग्य नहीं बदल सकता है, दूसरे का भी भाग्य बदल सकता है। यू कैन चेंज एवरीथिंग, ये चेंज कर सकता है, कांटा तय नहीं कर सकता कि इस पर किसे बैठना, लेकिन मैं तय कर सकता हूं मैंने कहां बैठना है, यहां बैठना कि यहां बैठना। ये कांटे ने तय किया कि मैंने तय किया? मैंने तय किया। ये जड़ है, ये तय नहीं कर सकता है, जो तय कर सकता है वो सजीव है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, एक बार बोलो और एक बार बोलो, और जो तय नहीं करता है वो सजीव होकर के भी निर्जीव जैसा है, निर्जीव नहीं है लेकिन कैसा है, निर्जीव जैसा है। अड़चन में है कि क्यों आई, गाड़ी ने आपको लाया कि आपने गाड़ी को लाया? हेलो, मैंने जगह का गाड़ी ने आपको लाया ना? आपने गाड़ी को लाया। इस लाने वाले को संभालो, इन तत्व की शुरुआत करी है। उम्मीद करता हूं कि प्रतिक्रम का क्लास भी शुरू हो चुका है। मुझे बाबू सेठ ने कहा है कि उन्होंने तरुण मोदी को रोक रोक के रखा हुआ है और मेरे मंगल पाठ के पहले उनको तरुण मोदी को गीत गाने के लिए समय देना है। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, मैं मेरे प्रोटोकॉल के अनुसार मंगल पाठ देता हूं, लेकिन आपने गीत सुने बिना उठना नहीं। यानी दोनों की बात रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी और बाबू सेठ की भी रह जाएगी, है ना? बराबर है। तो तरुण मोदी का गीत होने तक आप उठेंगे नहीं। चलारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवली तमत्वद मंगलम। चलार लघुतम अरिहंता लघुतम सिद्धा लघुतम साफु लघुतम केवली पन्नत्वद मंगलम। चतारी सनम भवज्जामि अरिहंते सनम भवज्जामि सिद्धे सनम भवज्जामि साहु सनम भवज्जामि केवली पन्नत्वम धर्मम सनम भवज्जामि। चार मंगल चारुत्वम चार शरणा दुख हरणा सुख करणा अवर्ण शरणा कोई जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर
1: सबको विनती है।
2: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मा